श्री वाहे गुरु साहब जीओ, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलता है हम भी चलना, दूर गवना सिर ऊपर मरना, सतनाम

हाथी कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर दिखाए किता आपना ज्यों तिस दी वड़े आई जो तिस पावै

सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हरगम अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे।

सुखवासी से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन

सोई थी सी जो तू दे सोई हाँ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नीत्याया जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लद्धा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया

छड़ कोई अवर ना त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ मुझे उभरे हैं, मरण काल का त्रास निभरे हैं। उजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्त जू करे हाउ रक्षा। राख लियो मुए राखण हारे साहे।

तिसी को हमारी सगल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को बाल मो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्तुला सफर कृपा दृष्ट कर फुला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्न घट घट के बट पट की जान जब उद कर।

को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह पैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एका अरूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पुप्पा अंडज जेर से तज किन्नी उत्पुज खान बहुर रच दिन्नी कहूँ फूल राजा हव बैठा कहूँ सिमट पयो संक्रिय कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप सियंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार आसिक संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रणकाता जे अस्तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हुए ताहे सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला कृपा दुष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शवाए सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा

ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किरबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को शय करता। सिरियस तुज पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला। मन बांछत फल पाप सोई, दुखनाथ से व्यापत कोई अड़ल। सुने गुंजो याहे।

चौबीस संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहसम तीन गह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रब वारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो बघयाने त्रया चरित्रे मंत्री पूर्व संवादे चार सौ पांच चरित्र समापतम सत शुभम सत अभजो दोहरा दाह जानकर दास पर की जय कृपा अपार आप हाद राख मोहे मन क्रम वचन विचार छौपई मैना ग्रशय प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ कान सुने पहचान न तिन साओ लिबलागी मोरी पग इन साओ महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना

मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारों करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा है, करता तेरा सब कुछ है, जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वसिया, वाजे शब्द घनेरे, कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा है, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, करसात सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिठो, जिस दियां ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया, तुर गर्म पाया तुद जिन काओ, से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुख होवा, तित कर अनहद वाजे, अनद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप तरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे।

फालवजतिन वस्तु पय्यो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका हुए उधारो ए वस्त तजी रह जाई नित नित राघुर धारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म प्रसारो।

जग में उत्तम काटी है विरले के महला पंजवा रखे रखनहार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन वह आप दयाल मनो नाम सारियन सात जना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारियन साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख।

तेरी वडियाई कोई ना हो न जाने मेरा वाहिगुरु बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आए सरिठे शब्द हो जाए तेग बहादुर सिमरिया करनाउनिद आवैताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी हे नमाणिया दे मान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज पर बख्शां कीती अमृत तुल तो लै के सुंदर सिंघासन ते साज के संगतां नूं दर्शन दारे बख्शे आप जी का कोट कोटान शुक्र है सुरे आप जी की हजूरी संध्या दवान की समाप्ति तो उपरंत आप जी के पवित्र स्वरूप जी के सुखासन हुए हैं सोहेला बाणी के जाप हुए हैं समझिया सेवावान निभा भुलों की माफी बख्शूगा वास से समत बख्शनी आप जी के भाने में चार पहर दिन सुखा बतीत हो रहना ही आप जी के भाने बतीत हो सतगुरु जी कृपा करो सुखासन तैयार होना चल के विराजमन होवो संगतान को खुशियां बख्शो अमृत जागरता बख्शिया दर्शन दारी बख्शने सही प्यारे मेल जना मिलिया तेरा नाम चेता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहालो सत श्री अकाल।

गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय गुरु आय

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु,

अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाहे। वाहे गुरु साहेब जियो, तनासरी महला पंजवा, कार बार एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वंदना हर वंदना

चरण कमल जाका मन रापे, सोग अगन तिस जन नाम व्यापे। सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे। पर तन दोख किश पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवे नेड़े।

जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता। साध जना की अचरज कथा अष्टपदी, साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगड़ी खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रटे सो ज्ञान, साध के संग मुझे प्रम नेरा, साध संग सब होत नवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्लय, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतहु तावे, साध संग अस्तित्व मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महा पुनीत, साध संग कस्यो नहीं बैर, साध के संग न बिगा पैर, साध के संग नाई को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग नाई अवताप, साध के संग तजे सव्याप, आपे जाने साध बढ़ाई, नान साध प्रभु बन आई, साध के संग न कबूतावे, साध के संग सदा सुख भावे, साध संग बस्त गोचर लहे, साधु के संग आजर सहे, साध के संग बसे थान उचे, साधु के संग मैल पूछे, साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुरबान, साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म राज करे सेवा, साध के संग सोवा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म, साध के संग ने किशकाल, दर्शन भेट होत निहाल, साध के संग कलूक धरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग यहाँ वहाँ सोहेला, साध संग विशर तरमेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग मृता जावे पार, साध निर्वसे नानक उदरे, साध सुन से साध के संग सुनो अर नाओ, साध संग अर के गुंगाओ, साध के संग नामन ते विसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे प्रमीठा, साधु के संग घट कर डीठा, साध संग पे आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता वखियाने, साध की उपमा तय गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का ना अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बनियाई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेव, जैसे जल में कमल अलेव, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग, जैसे सूर सर्व को सोग, ब्रह्म ज्ञानी कह दिश समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक, ज्यों बसदा को खोदे को चंदन ले, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नान ज्यों पाव का सह सुहाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैं न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मानो ए प्रकाश, जैसे धारे उपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाय मान, ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा, मन अपने है सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नान जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सवे उपर मैया, ब्रह्म ज्ञानी ते किश बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माहा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सोल भला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार।

सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाय रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख हो है ता एक न चलै नाल किव सचियारा होइऐ किव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लै वढे आई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शी सो एक हुक्मी सदा पुआई है हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्म है जे बुझै ता हो मैं कह ना कोई

ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन न सुरत होवे मन बुद्ध मन न सकल पवन के शुद्ध।

कार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख रन मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दाचार असंग सूर मो पाख सार असंग मोह लिवलाय तार कुदर

असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़िया कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल पख खाहे असंख निंदक

कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार।

थत कवण वार कवण से रुते माह कवण जत होआ आकार वेल न पाया पंडते दे होवे लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखन ले कुरान थितवार न जोगी जाने रुत माह न कोई जाकरता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई किव करे आका किव सा लाहे क्यों वरनी किव जाना नानके आखण सब को आखै एक दो एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डे नाई किता जाका होवै नानक जेको आपो जाणै अगे गया न सोहै पाताल पाताल लख आगास आगास ओड़।

गावन जते सते संतोखे गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखे सर जो जग वेदानाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले।

उत्तम नीच ना खोए। राते रुते थे तेवार पवन पानी अग्नि पाताल, तस्वे तरते था रखे धर्मसाल, तस्वे जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत।

करम किते पौन पाणी वैसंतर किते कान महेश किते बर में काढ़त कड़ी है रूप रंग के वेश केत अक्रम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पान नरेंद्र केतिया

मनसोय सचखंड वस निरंकार कर कर वेख नदन हाल तिथ खंड मंडल वर पांड देखो कथ तायंत नायंत तिथ लो आकार जिव जब हुक्म तव तवकार वेख विकसह कर विचार नानक कथना कर डासार जत बहारा धीर सुनियार अरण मत वेद हथियार पौ खलागन तवताओ पांडा पाओ अमृत ताल कड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सुरो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खेलै सगल जगत चंग्याईया बुरियाईया वाचै धर्मा दूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर।

गाड़े ग्रहण के तो नहार सुबात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सरनाए जाचन 101 दवैया दान दे बनंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव दे जल में तल में पली पल में सब धाव थपेंगे पुन पर तापन बाढ़ जाए तुन पापन के भव पुंज कपेंगे सात सू प्रसन्न फिरे सब सार सू प्रसन्न फिरे जाग सदर सवे अब लोक चपेंगे मानव इंद्र जननाथ जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट से नानक जातक दान अनेक सो अम्बर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पद अंध फसे जम पास भरेंगे जय नर श्रीपद के प्रसन्न भक्त नर फेर न दे तरेंगे कहाँ प्यो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ प्रियो ले सास समुद्रन लोग गयो पर लोग आयो बास कियो विखे आन सो बैठ के ऐसे है सुबह बतायो साज को सुन लियो सुबह जिन प्रेम कियो तनी प्रभ पायो काऊ ल पान पूछते रहे सर काऊ लंगरे लड़कायो काऊ लखे और बची दिशावे काऊ बचाको शीश निभायो को बतान को पूछते हैं पर सबको मृतान को पूजन तायो कूर किरिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवि आज बेनती चौपे हमरे करो आदे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मारे हमारा अपना जान करो दोबारा हमरे दुस्सुबे तुम गावो आप आदे मोह बचावो सुगी वसे मोरो परवारा से सिख सब करदारा मोरो शान कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भैन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो मर जाओ सो तुम ते पाओ सेव सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिये आभा दे मुझे वरिये मन काल का त्रास न मरिये उजो सदा हमारे बच्चा श्रीय जो करियो रक्षा राख लियो मैं राखना रे साहब संत साहे प्यारे दीन बंध इनके अंता तुम हो पुरी दर्दस्कंता काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिव जीव अवतारा काल पाए कर वचन प्रकाशा सगल काल का की तमासा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योति यो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन बजायो आद अंत कै अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सगल प्रजाजनी आप सुवारी शिवकन को सब गुण सो दियो शत्रन को पल मोहद कियो कड़ कड़ के अंतर के जानत बले बिने की पीर पिछान चीटी ते कुंचर दूला सब पर कृपा दिशकर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कड़ कड़ के फटफट की जाने जाबुद कर कर आकर धारा प्रजा धर तब दे पारा जब कर कर दो कबू तुम्हें मिल दे तर सब ऊन जेते बदन से सब धारे आप अपनी मुझे चारे तुम सब इते रहत निरालम जानत भेद भेद रालम निरंकार निर्विकार निलंब आद नीर आद संभ ताका मूड चारत भेदा जाको भेद न पावत भेदा ताको कृपा अनुमंत मां मूड किस भेद जानत मां देव को कैत सा शिव निरंकार का चिंत न पे आप अपनी बुद्धा जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती

दे आपै। सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे। पर तहन दोख किश पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवे नेड़े। कृष्णा यगन प्रव आप बुझाई, नानक उदरे प्रव शरणाई।

नानक उदरे प्रभ शरणाई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सत्संग जीओ बड़भागी माई भाई जिन्हों समा मिलिया है सतगुरां दे चरणां च बैठ के गुरु की इलाही बाणी नितनेम सुखमनी साहब दीआं बाणीआं सरवण कीतीआं ने सतगुरु रहमत करन आप सारिआं दी हाजरी दर प्रवान करन दरों करो नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शन। सो आओ सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत दा सदका एतवार दा दिहाड़ा है जिस तरह आप सारे जानते हो कि दिने अखंड पाठों के भोग पैने ने उपरंत सारा दिन दीवान सजना है वध चढ़ के आ करके गुरु के चरणों में बैठ के सेवा सिमरन करके अपना जन्म सफला करिए। आओ हुण श्री आसा जी वार दा कीर्तन सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी का जथा होना पासों आप कीर्तन सरवण करिए उपरंत जो सतगुरां दा महावाक है मुख वाक उस दी विचार उस तों बाद होवेगी सरवण करके जाण दी कृपालता करनी आओ कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पंडित एक मत सुन, मूर्ख पंडित एक मत उज्जत संजय करे पिया, धर्मी धर्म करे गावा वै, मंगे मुख दुआ जो सीधा वै, जो तुम जाने छठ बह घर बार, सब कपूरा पे हुए घर ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है तना।

बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले सतनाम।

सागर तरया साधु संगे निरपौ नाम जपहो हार रंगे पार तन दुख किछ पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवे नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप

कोई अलाय कारण करण करीम कृपा धार रहीम रहा वाली पंक्तियां ने अगे चलो कोई नावे तीरथ हिंदू तीर्था ते नांदे ने कोई हज जाए ते मुसलमान हाजी लोग हज करन जांदे ने मक्के नू कोई करे पूजा कोई सिर निवाए हिंदू पूजा करदे ने मुसलमान नवाज पढ़न वेले सिर नवांदे ने कोई पढ़े वेद हिंदू वेदां दा पाठ करदे ने कोई कतेब शामी मत दियां पुस्तकां मुसलमानां दियां ईसाइयां दियां यहूदियां दियां पारसियां दियां इन्हां नू शॉर्ट विच कहना होवे ते कतेब कह सकने आ कोई ओढ है नील कोई सफेद आम तौर ते सनातन मत वाले सफेद बस्तर ते शामी मतां वाले नीले बस्तर पहनदे सन कोई ओढ है नील कोई सफेद कोई कहे तुरक वो कहिंदे सानू फकर है असी तुरक हां कोई कहे हिंदू और को बांश है पिश्त को सुरगिंदू वो कहिंदे ने सानू मरनो उपरांत बहिश्त मिल जाए वो कहिंदे ने मरनो उपरांत सानू स्वर्ग मिल जाए पर जहांगीर एदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कहो नानक जिन हुकम पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता जिन्हां ने वाहगुरु दे हुकम नू पछाण लिया जां इंज कहीए जिन्हां नू रजा विच राजी रहण दी जाच आ गई है ओ परमात्मा दी दरगाह विच प्रवान हो जांदे ने हिंदू जां मुसलमान होण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा जोर इस गल ते दिता कि रजा विच राजी रहण दा वल सिखना चाहीदा है दो तरह दा मत्था टेकना है गुरमुखो एक फिजिकली सीस चुकाना है ये जरूर चुकाना है वो सीस पवित्र हो जाता है असी सिर दे उत्ते कोई चीज रख के ते झुक जाइए ना तो डिग पैंदी है जिन्हें दिमाग विच बर्डन ने ना चिंतावां ने ओवर थिंकिंग है वह मन करके झुक जाइए तो वह डिग पैंदे ने असी रिलैक्स होके फिर इथों गुरु की बख्शिश प्राप्त करके बाहर निकलने हैं पर भागां वालियां वह रूहां जिहड़ियां अंदरों भी मत्था टेक देंदियां ने अंदरों मत्था टेकना की है सतगुर आगे सीस भेट देओ जे सतगुर पूरै भावै जे सतगुरु नूं पा जाए ते मैं सतगुरु नूं अपना सिर भेट कर दिया अपनी अकल भेट कर दिया अपना आपा भेट कर दिया अज जदों गुरु अर्जन साहब सचे पातशाह वंदना करन लई कह रहे ने नमस्कार करन लई कह रहे ने ते ओ नमस्कार विखावा नहीं होना चाहिए कलगियां वाले पातशाह कहिंदे तोप दी अनेक दा निवावत है शीश को जदों तोपची ओदे च जिहड़ियां पुराणियां तोपां हुंदियां सन ओदे च बारूद दा गोला पांदे सन ते पिछों ओनू अग दिखांदे सन ते झुकना पैंदा सी शिकारी जदों शिकार करदा है जो हंता मिर्गाए ते ओ भी लम्मा पै के भी मैं दिसा ना मिर्गाबी नू वट दे ओले लम्मा पै के सहजे जे मैं इथों गोली चला देना झुकदा ते ओ भी है पर ओदे झुकण दे पिछे कपट है साडा झुकना मुबारक है उस झुकण दे पिछे ईगो ना होवे ओदे विच साडा आपा भाव जिहड़ा गुरु दे अगे समर्पित होवे ते फिर हजूर कहिंदे ने गुण गाव हो गोपाल राय गोपाल धरती दे जीवां दी परवरिश करन वाला अकाल पुरख राय राजा ओ जिहड़ा साडा सारियां दा सरमोर है उस दी सिफ सलाह करो की होवेगा सिफ सलाह कीतियां तुसी जपजी विच इक बचन रोज पढ़दे हो पर उदों कई वार काली काली पढ़ के क्योंकि उदों असी अर्थ भाव नहीं ना विचार रहे हुंदे नितनेम करना हुंदा इदां ही करना हुंदा जिदां करने आ उत्थे गुरु नानक साहब एक थां ते बचन करदे ने कहिंदे ने सा लाही सा लाह एती सुरत ना पाईआ नदियां अतै वाह पवहै समुंद ना जानी है समुंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरै ध्यान दे आजे एकाग्रता बनाई रखे।

0: रे प्रभ शरणाई। आप प्रभु ने पूरे गुरु नाल मिला के शब्द दी दात दे के उहदे अंदरों तृष्णा दी अग बुझा दित्ती हुंदी है। हे भाई, इस प्रकार ओ परमात्मा दी शरण विच आ के उधर जांदे ने, उहनां दा पार उतारा हो जांदा है। गुरु स्वरूप साध संगत जी, इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, बेअंत भुलां गलतियां जो मेथों विचारां करदियां होईयां ने, उहनां दी खिमा बख्शिश करनी जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया, सहज सेती मन वजियां, वाधाइयां राग रतन परवार परियां। शब्द गावन आईया, शब्दों तां गाव हो, हरी केरा मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा काज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किछ है, जिस दे सो पावे, सदा सिफ साला तेरी, ना मन वसावे, नाम जिन कह मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधार हो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर शां सुख मन है वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुरबान कीता गुरु विटा हो, जिस दियां ए वडियाईया, कह नानक सुनो संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत उदवास कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तो जिन कौ से नाम हर कह लागे, कह नानक तैं सुख हुआ, तित घर आनंद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संसाजन भय सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: फतेह तू ठाकुर तुम पहरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई तिहाय। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण तिहाई है जिस जिथे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ ने दया में ताए, सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहब जादियां, चालियां मुगतियां हठियां, जपियां तपियां जरा नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता, तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघणियां ने धर्म हेत सीख दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सां सवासां संग निभाया। तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे।

पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, विसाह दान, प्रसाद दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा, मत उच्ची मत पादे राखे आव, काल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दितार जीओ, श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार, सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो, निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, नियोटियां दी ओढ़ने, आसरियां दे आसरा, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत की है, अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मनुके दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जी दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है, अमृत वेले तो आप जी दी पावन हजूरी विच सुखमनी साहिब दे पाठ, पंज बाणिया दे नेतनेम, आसा कई वार दे कीर्तन होए, उपरंत आप जी वालों बख्श मुख वाग दी कथा विचार, गुरमत विचारा, छह पौड़ी आनंद साहिब दा जाप होया है, पातशाह जी कृपा करनी समुचियां सेवावां निभाउंदिआं होया, पुल चुग दी खिमा बख्शना, पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन कथा दा भाव, आईयां संगतां दे हिरदे ते वसाउणा, सब दीआं दर हाजरीआं तिल फुल भेटावां प्रवान करनीआं, धरो करो नाम दान, चढ़दी कला दी दाद बख्शनी, परिवारां विच सुख शांति, कारोबारां विच वाधे करने, जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई, चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी, चढ़दी कला करनी आप जीआं दे भाणे विच, रहण सुखां नाल बतीत होई, आया जनाब दे भाणे विच बाणी पढ़दिआं सिमरन करदिआं बतीत होवे, इस वेले बख्शिआं खजानिआं विचों कड़ाह प्रसाद दी देग लंगर सज के हाजिर है, करी पाक साल सोज पवित्रा लाव भोग हर राय, आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम, वाहिगुरू वाहिगुरू जपे, श्री मुख वाग दी बख्शिश करो, सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आप जी दा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा आग्या पही अकाल के, तबै चलायो सब सिखण को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की, जो प्रभु को मिल बोच है।

रख लीनी हर मेरी गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुपाए

तत्र मिलह मेरे पाई दुबदा दूर करो लेवलाए होए एकत्र मिलो मेरे पाई दुबदा दूर करो लेवलाए हर नाम के होवो हो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विशाए। परम सन्मान योग दसां ही पातशाहियां दी जोत सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुकद्दस गोद विच हफ्तावारी दीवान विच हाजरियां भरदियां गुरु सवारियां तों गुरबाणी दे मनोर कीर्तन इतिहासक पंथक विचारां प्रबंधक वीरां पासों निकट भविख दे प्रोग्राम सरवण करके आप जी लाहे प्राप्त कर रहे सो कुछ समय वास्ते दास नूं आप जी नाल विचार करन दा हुकम होया है। गुरु सवारियो इस तों पहलां दास तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे चरणां विच कुछ विचार रूपी बेनतियां रखे। सर्वप्रथम बेनती है कि आप सारी संगत ने आसीस देनी एकाग्रता बख्शिश करनी जे हो सके ते लगभग साढ़े सारियां कोल ही सैल फोन ने जे थोड़ी देर लई ओ फोन बंद कर ले जान जां साइलेंट ते लगा ले जान बड़ी मेहरबानी होवेगी। इस तों पहलां दस तुच्छ बुद्धि अनुसार बेनतियां शुरू करे मैं अपना सबजैक्ट दस दिया। पिछले दिनी भी भाई साहब दलावर सिंह हुणां दी माता नूं इत्थों दी प्रबंधक कमेटी ने सन्मानित कीता है। आ चंदो कलां दा घटनाक्रम वापरिया फिर सारागढ़ी दा इसे बीते हफ्ते दे विच ही वो इतिहास है तुहाडा और एक दिन भी इस तरह का नहीं जिहड़ा साडा इतिहासक दिन ना होवे। तो ये सारे दिनां नूं मुख रखदिआं सारियां समस्यावां नूं मुख रखदिआं जिहड़ी गल तुहाडी समझ गोचरी है मेरी समझ गोचरी है वो ये है साध संगत जी मैं फतेह दी सांझ करन तों पहलां बेनती करदिआं किसे भी टीचे नूं पूरा करना होवे कोई भी गोल अचीव करना होवे ते उहदे वास्ते मुकम्मल तैयारी बहुत जरूरी हुंदी है और पंथक तौर ते कुछ अचीव करना होवे ते फिर खिमा करना पंथक एकता भी बहुत जरूरी हुंदी है। यही मेरा अज दा विशा है और मैं कोई बहुत वड्डा उपदेशक नहीं मैं साधारण जिहा सिख हां तुहाडे वर्गा ही तुसीं मान करदे हो इत्थे बिठा दिंदे हो ते मैनू जिन्ना क पता है मैं वो तुहाडे चरणां विच बेनती रूप विच रख देना। आओ दस्तबस्ता सनिमर गुरु फतेह अर्ज कर रहा इक्के वार कहण ते ही बेनती प्रवान कर लैणी गज के आखीए जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हजूर दा अमृत बाणी विच हुक्म है होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिव लाए। हे भाई मसला राजनीतिक होवे मसला सामाजिक होवे जां ओ धार्मिक दृष्टिकोण तो कोई दुबदा खड़ी हो जाए क्योंकि जेडे वखरेवे हुंदे ने जेडे मतभेद हुंदे ने वो उदों हुंदे ने जदों साडे मन विच दुबदा पैदा हुंदी है जदों साडे विचार एक सुर नहीं हुंदे। साध संगत जी हुण जदों दुबदा खड़ी हो जाए खिमा करना जां कहीए भी जदों मतभेद हो जाए फिर की करिए
कोई भी मसला है बिना डिबेट दे बिना गलबात दे बिना विचार दे वो हल नहीं हुंदा। आज मामूली जी गल हुई है एक दूजे नाल रुस के दूरो दूर होके बह जाइए आज तो बाद इनू कवाना ही नहीं गा ते ओ दो शख्स कदी भी एक दूजे दे नेड़े नहीं लग सकणगे। मेरे कहण तो मुराद गलबात दा दरवाजा कदी भी बंद नहीं करना चाहीदा। सगों हजूर ते कह रहे ने भी इको ही सफा विछा के सारे ओदे उत्ते बैठ के ते दिल खोल के अपनिया अपनिया गल्लां दसो भी वीर तेरी ऐस गल नाल मैं सहमत नहीं तेरे ऐस विचार नाल मैं सहमत नहीं। फिर उन्हां विचारां नूं गुरबाणी की रोशनी विच विचार लिया जाए बई विचार मेरे भी गलत हो सकते ने विचार तेरे भी गलत हो सकते ने पर गुरबाणी गलत नहीं हो सकती। विचारां दा मतभेद हो जाना ते बड़ी दूर दूर चले जाना ये कोई दिब दृष्टि वाली गल नहीं। डाइनिंग टेबल दे उत्ते जदों एक परिवार बैठदा है डिनर करन वास्ते ते सारे सहमत नहीं हुंदे भी अज धोती दाल बननी चाहीदी सी कोई छोलियां दी दाल दा शौकीन भी विच बैठा हुंदा है वह नक मूह मरोड़दा है कि बना लिया जे। मेरे बेनती करन तो मुराद भई डाइनिंग टेबल ते बैठे हुए एक परिवार विच भी निके निके मतभेद हो सकते ने एडे वड्डे पंथ विच कुछ मतभेद हो जाण ये माइनर गल है उनू लैके बहुत ज्यादा हाट करना बहुत ज्यादा जिद करनी नहीं फिर की करिए। हजूर कहन लगे होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबिदा दूर करो लेवलाए ते ए जड़ा दुचिता पान है इनू फिर दूर करो ते हर नामे के होवो जोड़ी। तुसी की करो जोड़ीदार बन के एक दूजे दे जोटीदार बन के हरी नाम विच सुरत जोड़ो जी ओदे नाल की होवेगा। हजूर कहन लगे जय हर सिमरन भया तय उपाद गत कीनी जिथे सिमरन आ जाए उथों आदियां व्याधियां उपाधियां उथों झगड़े खत्म हो जाते ने। वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर ए मत दीनी जप हर भवजल तरना। मैं पंथक एकता ते बेनतियां करनिया ने तुहानू नाल लैके ए जिहड़ियां पंक्तियां नू मैं आधार बना रहा इसलिए मैं पहला आप जी दे चरणां विच रखियां ने। एक वारी तुसी भी कृपा करो ते आपां सारे

अज्ञान है। भाई साहब गुरदास जी कहन लगे भई वेखो तुसी कदी कीड़ियां नू तुरदे होए वेखो, एक कीड़ी जेड़ी उन्हां दी मुखी है वह अगे अगे तुरदी है, बाकी तमाम कीड़ियां उहदे पिछे पिछे पंक्ति बना के कतार बना के तुरदियां ने। उस कीड़ी नू अधिकार दे दिते, मुखी बना दिता, हुण रस्ते विच कोई झगड़ा झंझट नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, वह अगे अगे बाकी तमाम कीड़ियां उहदे पिछे है। कीड़ी सब तो छोटा जिहा जीव, पर तुसी यूनिटी वेखो, तुसी डिसिपलिन वेखो, तुसी अनुशासन वेखो, भी 84 लाख जूना दा सरदार उहदे सामने फिका लगदा। जैसे एक चींटी पाछै

बलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लाइन ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासें हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमराऊं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दे आवे ताई सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धरके बल जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपया वंड के शीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बल जी। इन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चरवाए सिखी सिदक केसां सवासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके बल जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बल जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेता वै चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथ्या रियाए देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बारे बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चमकियां झंडे बंगे जगो जगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत का रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा समालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दी माण सतगुरु नताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। अरदास बेनती है आप जी दिया महान बख्शिशां रहमतां दा सदका पावन हजूरी विखे दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच अमृतमई बाणी दे शब्द कीर्तन कथा विचारां होईयां बाणी पढ़दियां विचारदियां अनेकां भुल्लां हो गईयां होणगियां अलपग जान के खिमा करनी अगों वास्ते समत बख्शना अमृतमई बाणी दा भाव दर आईयां संगतां दे हिरदियां च वसाउणा सरबत दियां तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनियां दरों करों अमृत वेले दा जागरना नाम दान सिखी सिदक भरोसा दान सरबत दी कारज रास करने शुभ मनोकामना संपूर्ण करनियां पावन दरबार दी हाजरी भरदियां गुरसिख परिवारां वल्लों अरदासां बेनतियां ने दर कर दे सेवक सरदार बलजीत सिंह जी बीबी जी सुप्रीत कौर वल्लों चंगी दी दात लई आप जी दे चरणा कमलों प्रति अरदास बेनती है। सतगुरु जी मेहर करनी सेवकां दे सिर ते रहमतां भरे हथ रखना शुभ मनोकामना संपूर्ण करनिया अंग संग सहाई होना दर कर दे सेवक विवेक अरोड़ा वालों तंदुरुस्ती चढ़दी कला वास्ते दे परिवार की सुख शांति लिए अरदास बेनती है। सतगुरु जी मेहर करनी परिवार के सिर ते रहमतां भरे हथ रखना दे अरोगता की दात बख्श के कृतार्थ करना दर कर दे सेवक अर्शप्रीत सिंह वालों जन्मदिन की खुशी अंदर आप जी का शुकराना करदे हां तंदुरुस्ती चढ़दी कला वास्ते अरदास बेनती है। सतगुरु जी मेहर करनी सेवक परिवारों के सिर ते रहमतां भरे हथ रखना दरों करो नाम दान सिखी सिदक भरोसा दान चढ़दियां कलां की दात बख्श के कृतार्थ करना बख्शे हुए खजानों विचों समूह संगतां वल्लों कड़ा प्रसाद की देगदार ते हाजर है प्रवान होए प्रवान होया प्रसाद सरबत सात संगत च वरताउण की आग्या होवे पावन हुक्मनामे बख्श के संगतां नूं कृतार्थ करो सही प्यारे मेलो जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।
ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਰਾਗਿਆ ਬਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਰਾਯੂ ਪੰਨ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਉਚਾ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ

बंदना बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। गोपाल राय क्या वाहिगुरु जी ने पंजवें पातशाह बंदना करन दा पन तरीका दस रहे। बंदना दे नमस्कार जिवें गुरमुख आउंदे ने सतगुरां नूं नमस्कार कर रहे ने सारे, कई डंडौत करदे ने लम्मे पै गए, वह भी लिखिया गुरबाणी च डंडौत बंधन अनेक बार सर करदे आ। डोलन ते राखो प्रभु, हे मेरे वाहिगुरु मेरे मन नूं थिर कर दिओ। ये डोलदा डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। इस संसार दे विच गुरु ते सतगुरु दो ही ऐसे करैक्टर ने जिहड़े डोलदे नहीं, बाकी सारे डोल जांदे। सतगुरु जिन्हां नूं तुसीं वंदना कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, मत्था टेक रहे हो, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। दूसरा जिसनों लिखिया आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच वाहिगुरु। नाम रहे हो साधु रहे हो गुर गोबिंद। वो साधु फिर जेड़े नाम दे नाल जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़ जाते हैं, शरण च चल जाते हैं, वह भी नहीं डोलते। अज सतगुरां ने सानू युक्त दसी है कि वंदना करनी किवें है। वंदना दी नमस्कार दशमेश पिता भी करते ने, नमस्कार किनू करते हैं दसो, किनू करते नमस्कार तिसी ही को हमारी। अगे की लिखा सकल परजा जिन आप सवारी। किन्ने सवारी है वाहिगुरु जी ने सृष्टि नूं बनाया, किन्ने है? करन कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोई, नानक तिस बलिहार ने जल थल मही अल सोए, जिहड़ा सारे थाएं ज्योत रूप वस रहा रमिया होया। तां नूं राम भी कहा, हर थाएं तुहाडे अंदर भी ते बाहर भी। पहला असी अंदर नमस्कार करनी है, साडे सारे दे अंदर ज्योत रूप या वाहिगुरु। सब मह जोत जोत है सोए, तिसदे चानण सब मह चानण होए। ते फिर सतगुरां नूं पुछिए जी साडे अंदर कित्थे आ वो ज्योत रूप वाहिगुरु, किहदे तुहाडे सिर दे उपर बैठे आ। गुरबाणी जी लिखिया जिसके सिर उपर तू स्वामी, जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। क्योंकि सानू ज्ञान नहीं हैगा कि वाहिगुरु साढ़े अंदर कित्थे आ ते बाहर कित्थे आ। ते फिर एवें भुल भुलेखे जी अहीं नमस्कार करी जाने। जिन्हां नूं नमस्कार कर रहे हो ना उही दस रहे ने कि जिन्हों तुसीं हुण करनी आ उह तुहाडे अंदर भी वसदा ते बाहर भी, अंतर वसे बाहर भी। उह नानक दर्शन देख प्रभ मोही। आपां दर्शन करने आ कि मन मोहया जाऊगा साडा, वह फिर सानू दस दे तरीका। वेखो ये अज शब्द पावन तुसीं पढ़ के आए हुक्मनामा है ना, हुक्मनामा तनासरी राग दे विच पंजवें पातशाह जी ने बख्शिश किया शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी महाराज। एक रहा

इधर आ जाओ जी। सारे बंदना करिए, जुड़ के करियो हुण, अखां बंद करके। गुण गाओ, मन निर्मल हो जाता। गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बंदना हर बंदना, गुण गाओ गोपाल राय।